मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है।

आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई 2026। समय प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब प्रारंभ होते हैं हमारे आज के प्रसारण।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं अब हिंदी समाचार प्रसारित होंगे। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के ठीक बाद एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7

0: सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। अपनी गलती को सुधारना और स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो हमारे मन के धरातल की सतह को चमकदार और साफ कर देती है। महात्मा गांधी। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जब हमारे हृदय में ईश्वर नाम की ज्योत जल जाती है तो ये संसार हमें नश्वर लगने लगता है। हमें बस प्रभु नाम की सार्थकता का ही विश्वास होता है और दिन रात हमारा मन उसी नाम, उसी प्रभु नाम में लगा रहता है।

सच्ची शांति पाने का एकमात्र रास्ता भक्ति की राह है, और वो तभी संभव है जब हम तन मन से अपने परम पिता परमेश्वर को अपने आप को सौंप देते हैं।

इस सृष्टि के कण कण में परमपिता परमेश्वर का वास है। सृष्टि का आधार ईश्वर नाम है और इसे पाने का एकमात्र रास्ता भक्ति का मार्ग है, जिस पर हम चलकर अपने इष्ट को पा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं।

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीजी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नानादि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिणी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड से आज का प्रसंग। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों और भाइयों, राम राम। भाइयों, आज कृषि की बातों में चर्चा करेंगे कपास फसल की देखभाल के बारे में कुछ बातचीत। भाइयों, जहां तक बात आवे है कपास फसल की, तो अब तक जो हमारी फसल है वो लगभग ये कहा जा सके है कि भाई जो फुटाव है उसके ऊपर है। और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने ठीक समय पर बिजाई की थी, तो उन्होंने एक एक जो सिंचाई है वो भी जरूर इसकी कर ली होगी। लेकिन कुछ हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने थोड़ा पछेत में करी थी, और ऐसी जगह भी हैं जहाँ कुछ दिनों की जो बरसात है वो चल रही है, शायद उनका बरसात से काम भी चल जाए। और मान लो नहीं किसी जगह पर बरसात हुई है और हमारी कपास की जो फसल है ये देख लें कि वे मान लो 8-9 बजे के आसपास यदि सूखा हुआ दिखाई देवे तो उसके अंदर हम हल्की सिंचाई कर दें। और रही बात, देखो इसमें जो देसी कपास है उसके जो पौधे हैं उसमें से कुछ न कुछ जो फूट है वो जरूर निकल रही होंगी। इसमें उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमने दूसरी जो मात्रा है वो जरूर डाल देनी है। खासकर जो देसी कपास है इसमें 25 किलो यूरिया 1 किलो के हिसाब से हमने डालना पड़ेगा। और जो अमेरिकन कपास है उसमें फूल जिस समय पर आओ उसमें 40 किलो यूरिया 1 किलो के हिसाब से उसमें डालना पड़ेगा। भाई जो संकर किस्म है उसमें जो नाइट्रोजन वाली खाद है वो 150 किलो यूरिया, इसको हम 3 भागों में बराबर भागों में बांट लिया। और 3 बार जब हम जैसे शुरू में बिजाई के समय पर डाल रहे हैं, फिर बोकी आवे उस टाइम पर भी डाल रहे हैं, फिर फूल आवे उसके टाइम पर भी डालना है, तो वो 3 बार में हमने डाल देनी है। और आगे जो फूल आवे उसमें 50 किलो की जो यूरिया की मात्रा है वो हमने ज़रूर डालनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और ख़ासकर जो अमेरिकन कपास है उसमें ज़्यादातर जो फलों के जो सड़ने या फिर टिंडे के जो गिरने की जो समस्या है कई जगह पर वो भी आ गया है, तो उसमें हम प्लेनोफिक्स दवाई है या कोई और अच्छी भी दवाई हम इसमें ले सके हैं। इसका हम जो पहला छिड़काव है वो 50 EC ताकत से कर सके हैं, और इसको हम लगभग 250 लीटर के आसपास जो पानी है वो हमने लेना पड़ेगा। एक बात का इसमें ध्यान रखना भाइयों, जो भी हम स्प्रे कर रहे हैं स्प्रे के समय पर जो हम टंकी ले रहे हैं वो खास ध्यान देने की बात ये आ गया है कि भाई यदि मान लो हमने उसमें 2,4-D का प्रयोग पहले किया है तो फिर हमने उस पंप को किसी भी सूरत में जो कपास वाली फसल है उसमें उसको प्रयोग में नहीं करना है, क्योंकि यदि हम उसको प्रयोग में करेंगे तो जो बंदर पंजा है या मोर पंजा भी कहते हैं वो उसके अंदर आ जाए है। और मान लो ये करेंगे भाई आगे जैसे कई जगह पर कोणदार धब्बों की बीमारी आ जाए है या जो दूसरी बीमारी आ जाए है, तो उस पर ऑक्सीक्लोराइड 600-800 ग्राम 1 किलो के हिसाब से ले सके हैं। इसका हम 15-20 दिन के अंतर पर इसका घोल बनाकर छिड़काव कर दें। और हर बात में एक ही बात का ध्यान रखना है कि भाई जो 2,4-D के लिए प्रयोग हमने स्प्रे पंप कर लिया उसको तो कपास में किसी भी सूरत में यूज नहीं करना है, प्रयोग में नहीं लाना है। यदि वो हमने एक बार भी ले दिया तो फिर उसका हमने बहुत नुकसान भुगतना पड़े है। और जो ये एक बार बीमारी आ जाए उसमें जो जितने हमारे पौधे इसकी चपेट में आ जाएंगे तो उसमें भी दिक्कत आ जाए। ज़्यादातर तो भैया कपास की ऐसी फसल है यदि मान लो किसी और ने भी 2,4-D का प्रयोग रखा है और उसकी भी जो बदबू है यदि वो हमारे खेत तक आएगी तो उसका असर भी हमारी जो कपास की फसल है उसके ऊपर आवे है, तो इस बात का ध्यान हमने रखना है। बाकी मान लो हम जैसे सिंचाई कर रहे हैं तो फिर थोड़ी हल्की करें, क्योंकि ये एक ऐसा समय है इस समय में हम ज़्यादा गहरी सिंचाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कारण में तो फिर ये भी है कि ज़्यादा मान लो नमी है वो बन जाए।

0: एक खेत की जो निकासी है, निकासी का हमारा पानी का प्रबंध जरूर होना चाहिए। जो दूसरी दवाई है उसमें जितनी भी दवाई की मात्रा हम लें, सबसे पहले तो जो खेत का निरीक्षण है वो करना जरूरी है। पहले खेत का निरीक्षण करें, उसके बाद फिर दवाई लें। इस बात का ध्यान रखें कि भाई हमारे ADO साहब हैं या और कोई साइंटिस्ट है उसकी सलाह लेके ही हम जो कपास की फसल है उसमें स्प्रे करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमंडल स्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
3: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
2: वार्ताहरान संबोधयन प्रधानमंत्री न्यगादीत यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जागृतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव IVF चिकित्सालयानां ART केन्द्राणाम् अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासङ्गिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि

0: आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर कुल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है।

रात 9:30 बजे आप सुनेंगे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे श्रीमती लोकेश चौधरी, श्रीमती चंद्रकांत सिवाल, श्रीमती सुनीता सिंह और सुनील कुमार।

कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:20 पर और कार्यक्रम ग्रामीण संसार के अंतर्गत आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम। विषय रहेगा पशुपालन संबंधित समस्या व सुझाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अनिल दहिया।

0: फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे हमारी पहली प्रसारण सभा में सुबह 9 बजे कार्यक्रम एक रंग में। दोपहर 1:10 पर आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। शाम 7:30 कार्यक्रम फिल्म संगीत के तहत रात 9:15 एक फिल्म से कार्यक्रम में और रात 10:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: गांधी चर्चा में आज आप सुनेंगे अक्षर ज्ञान विषय पर गांधी जी के विचार, बाबा का प्रिय भजन और रामधुन।

0: पहले प्रस्तुत हैं अक्षर ज्ञान विषय पर गांधी जी के विचार। वाचक हैं यज्ञ दत्त मिश्र।
1: अक्षर ज्ञान देना मेरे लिए कठिन प्रतीत हुआ। मेरे पास उसके लिए आवश्यक सामग्री न थी। स्वयं मुझे जितना मैं चाहता था उतना मैं न था और न ही मुझ में उतनी योग्यता थी। दिन भर शारीरिक कार्य करते करते मैं थक जाता था और जिस समय थोड़ा आराम करने की जरूरत होती उसी समय पढ़ाई के वर्ग लेने होते थे। अतएव मैं ताजा रहने के बदले जबरदस्ती से जागृत रह पाता था। सुबह का समय खेती में और घर काम में जाता था, इसलिए दोपहर के भोजन के बाद तुरंत ही शाला का काम शुरू होता था। इसके सिवा दूसरा कोई भी समय अनुकूल नहीं था। अक्षर ज्ञान के लिए अधिक से अधिक 3 घंटे रखे गए थे। कक्षा में हिंदी, तमिल, गुजराती, उर्दू भाषाएं सिखाई जाती थीं। प्रत्येक बालक को उसकी मातृभाषा के द्वारा ही शिक्षा देने का आग्रह किया जाता था। अंग्रेजी भी सबको सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत का और सब बालकों को थोड़ा हिंदी का परिचय करवाया जाता था। इतिहास, भूगोल और अंकगणित सभी को सिखाना होता था। यही पाठ्यक्रम था। तमिल और उर्दू सीखने का काम मेरे जिम्मे था। तमिल का ज्ञान मैंने स्टीमरों में और जेल में प्राप्त किया था। इसमें भी पोप कृत उत्तम तमिल स्वयं शिक्षक से आगे मैं नहीं बढ़ सका था। उर्दू लिपि का ज्ञान भी उतना ही था जितना स्टीमर में हो पाया था। फारसी अरबी के खास शब्दों का ज्ञान उतना ही था जितना मुसलमान मित्रों के परिचय से प्राप्त कर सका था। संस्कृत जितनी हाई स्कूल में सीखी थी उतना ही जानता था। गुजराती का ज्ञान भी उतना ही था जितना शाला में मिला था। इतनी पूंजी से मुझे अपना काम चलाना था और इसमें मेरे जो सहायक थे वे मुझसे भी कम जानने वाले थे। देशी भाषाओं के प्रति मेरे प्रेम ने, अपनी शिक्षण शक्ति के विषय में मेरी श्रद्धा ने, विद्यार्थियों के अज्ञान ने और उससे भी अधिक उनकी उदारता ने इस काम में मेरी सहायता की। तमिल विद्यार्थियों का जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, इसलिए वे तमिल बहुत कम जानते थे। लिपि तो उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी, इसलिए मैं उन्हें लिपि तथा व्याकरण के मूल तत्व सिखाता था। विद्यार्थी जानते थे कि तमिल बातचीत में तो वे मुझे आसानी से हरा सकते थे, और जब केवल तमिल जानने वाले ही मुझसे मिलने आते तब वे मेरे दुर्भाष्य का काम करते थे। मेरी गाड़ी चली क्योंकि मैंने विद्यार्थियों के सामने अपने अज्ञान को छिपाने का कभी प्रयत्न नहीं किया। हर बात में जैसा मैं था वैसा ही वे मुझे जानने लगे। इस कारण अक्षर ज्ञान की भारी कमी रहते हुए भी मैं उनके प्रेम और आदर से कभी वंचित नहीं रहा। मुसलमान बच्चों को उर्दू सिखाना अपेक्षाकृत सरल काम था। वे लिपि जानते थे, मेरा काम उनमें वाचन की रुचि बढ़ाने और उनके अक्षर ज्ञान सुधारने का ही था। मुख्यतः आश्रम के सब बालक निरक्षर थे,

0: पाठशाला में कहीं भी पढ़े हुए नहीं थे। मैंने सिखाते सिखाते देखा कि मुझे उन्हें सिखाना तो कम है, ज्यादा काम तो उनका आलस्य छुड़ाने का और उनमें स्वयं पढ़ने की रुचि जगाने का और उनकी पढ़ाई पर निगरानी रखने का है। मुझे इतने काम से संतोष रहता। यही कारण है कि मैं अलग अलग उम्र के और अलग अलग विषय वाले विद्यार्थियों को एक ही कमरे में बैठाकर मैं उनसे काम ले सकता था। पाठ्य पुस्तकों की जो पुकार जब तब सुनाई पड़ती थी, उसकी आवश्यकता मुझे कभी मालूम नहीं हुई। मुझे याद नहीं पड़ता कि जो पुस्तकें हमारे पास थीं, उनका भी बहुत उपयोग किया गया हो। हर एक बालक को बहुत सी पुस्तकें दिलाने की मैंने जरूरत नहीं देखी। मेरा ख्याल है कि शिक्षक विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक है। मेरे शिक्षकों ने पुस्तकों की मदद से मुझे जो सिखाया था, वो मुझे बहुत ही कम याद रहा था, परंतु उन्होंने जो मुझे सिखाया, उसका स्मरण आज भी बना हुआ था। बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं, उसकी अपेक्षा कानों से सुनी ही बातों को थोड़े परिश्रम से और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं बालकों को एक भी पुस्तक पूरी पढ़ा पाया था। अनेक पुस्तकों में से जितना कुछ मैं पचा पाया था, उसे मैंने अपनी भाषा में उनके सामने रखा था। मैं मानता हूं कि वो उन्हें आज भी याद होगा। जब मैं थकावट के कारण या अन्य किसी कारण से मंद और नीरस न होता, तब वे मेरी बात रसपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनते थे। उनके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे उनकी ग्रहण शक्ति का अंदाजा हो जाता था।
1: अभी आपने सुने अक्षर ज्ञान विषय पर गांधी जी के विचार, और अब सुनिए बापू का प्रिय भजन।

0: रामधुन के साथ ही गांधी चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा, जिसमें आज आपने सुने अक्षर ज्ञान पर गांधी जी के विचार। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, हम सब जीवन में इसको बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि अपने जीवन को आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर सकें। पर क्या आप जानते हैं कि ये सभी आधुनिक संसाधन प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित हैं? अब सोचने की बात ये है कि जिस रफ्तार से हम इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितने समय तक उपलब्ध रहेंगे? इन संसाधनों को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ऊर्जा के विकल्प ढूंढें, और इसी दृष्टि को परिपूर्ण करता है आज का दिन। आज हम सब वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन ऊर्जा के वैकल्पिक रूपों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हम सब मनाते हैं। इस दिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय जैसी नवीनीकरण ऊर्जा के रूपों के बारे में अधिक

क्वाड्रियन BTU से ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के कुछ सबसे आम स्रोतों में तेल, कोयला और गैस शामिल हैं। इन ऊर्जा स्रोतों को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। जीवाश्म ईंधनों से जुड़ी कई चिंताएं हैं, विशेष रूप से कि क्या ये अत्यधिक खत्म ना हो जाएं। जीवाश्म ईंधनों से संबंधित अन्य चिंताओं में वायु और जल प्रदूषण, भूमि क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग भी शामिल हैं। ये समस्याएं वैज्ञानिकों को ऊर्जा के नए रूपों की खोज के लिए प्रेरित कर रही हैं, ताकि उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु और भूतापीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों के पूर्ण विनाश के बिना ऊर्जा उत्पन्न करने के समाधान के रूप में अधिक प्रचलित हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम नवीनीकरणीय ऊर्जा को अपनाएं। दुर्भाग्यवश ऐसा करना अभी आसान नहीं है, क्योंकि इन ऊर्जा स्रोतों के काम करने के तरीके और उपभोक्ता के लिए इनकी लागत के बारे में अभी जन जन में जानकारी का अभाव है। इसी अभाव को दूर करने के लिए इस दिन विशेष कार्यक्रमों का, सेमिनारों का आयोजन किया जाता है, ताकि आम जनता को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के बारे में जानकारी दे सके। क्योंकि जब एक आम व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, तभी एक देश आत्मनिर्भर बनता है।

श्रोताओं, आजकल हम सब आगे बढ़ने की होड़ में शामिल हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डिजिटलाइजेशन। इसका अर्थ है सूचना को भौतिक स्वरूप से डिजिटल रूप में बदलना। इसके विपरीत डिजिटलाइजेशन का अर्थ है व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। डिजिटलकरण का तात्पर्य भौतिक वस्तुओं और विशेषताओं का डिजिटल रूप तैयार करना है, यानी हम किसी कागजी दस्तावेज को स्कैन करके उसे डिजिटल दस्तावेज के रूप में सहेज कर रख पाते हैं। कंप्यूटरीकृत प्रणालियों, डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए हम कर सकते हैं। विनिर्माण में मैनुअल या यांत्रिक माप को इलेक्ट्रॉनिक माप में परिवर्तित किया जाता है। डिजिटलकरण मूलभूत है और ये भौतिक दुनिया और सॉफ्टवेयर के बीच का एक गहरा संबंध है। हम इसे 1960 के दशक से प्रयोग में करते आ रहे हैं। ये उन सभी प्रतिक्रियाओं का सक्षम बनाता है जो व्यावसायिक मूल्य हमें प्रदान करती हैं। डिजिटलकरण डिजिटल तकनीकों और डिजिटलाइज्ड डेटा का लाभ उठाकर प्रक्रियाओं को सक्षम और बेहतर बनाना है। इसलिए डिजिटलीकरण के लिए डिजिटलाइजेशन आवश्यक है। डिजिटलीकरण से उत्पादकता और दक्षता दोनों बढ़ती है, जबकि लागत इससे कम होती है। डिजिटलीकरण मौजूदा व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं में सुधार करता है, लेकिन उन्हें बदलता या रूपांतरित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, यह किसी भी प्रक्रिया को मानव चलित घटना या घटनाओं की श्रृंखला में सॉफ्टवेयर चलित बना देता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। अब आज की बात करें तो आज हम एक क्लिक पर घर बैठे बहुत सारे काम कर लेते हैं, बहुत सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। बैंक का काम हो, स्कूल का काम हो, या कोई और व्यवसाय से संबंधित काम, घर बैठे उसको करना बेहद आसान हो गया है। पर वहीं पर खतरे भी बढ़ रहे हैं। प्रत्येक काम को करने में हम सक्रिय हो, उसके बारे में पूर्ण रूप से हमें जानकारी हो, तो हम उसमें नुकसान कम उठाते हैं, नुकसान की संभावनाएं कम होती हैं। इसीलिए जरूरी है कि आज आगे बढ़ने की इस होड़ में डिजिटलीकरण को अपनाना भी है और इसके लिए जरूरी सतर्कता और इसके बारे में जानना भी जरूरी है, यानी जागरूक बनना जरूरी है। जब हम जागरूक होंगे तभी हम खतरों की संभावनाओं को कम कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सब जागरूक हों, अपने आसपास इस बारे में जागरूकता फैलाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति इससे होने वाले भारी नुकसान से खुद को बचा सके।

श्रोताओं, ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद एक बार फिर बच्चों ने विद्यालयों की तरफ रुख किया है। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर प्रक्रियाबद्ध तरीके से पढ़ाई करने के लिए वो सब तैयार हैं। ऐसे में जरूरी है कि अध्ययन प्रक्रिया को बच्चों के लिए रोचक बनाया जाए। हम सब जानते हैं कि सुनने से ज़्यादा देखी गई चीज़ें या घटनाएं लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। ऐसे में अगर बच्चों के अध्ययन सामग्री को घटनाओं से जोड़कर, कहानियों से जोड़कर दिखाया और सुनाया जाए तो पाठ्यक्रम की रोचकता को बढ़ा सकता है और बच्चों में होने वाली निरसता को दूर करके उनका मन अध्ययन में लगाने के लिए एक बहुत बड़ी जीत बन सकता है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से सूरज की रोशनी हमारे जीवन को उजाले में बदल देती है, ऐसे ही शिक्षा भी हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हम सब में ज्ञान का प्रकाश भर देती है, जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना ही हमसे छीन सकता है। अगर शिक्षा ना हो तो मानव जीवन अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरों में डूब जाएगा। शिक्षा केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सोचने, समझने और आगे बढ़ने की कला भी हम सबको सिखाती है। ये हमें सही गलत की पहचान कराती है, आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाती है। यही कारण है कि इसे भोजन और पानी की तरह ही जीवन का आधार माना गया है। शिक्षा हमें नई चीज़ें सीखने में सहायता करती है, दुनिया को बेहतर तरीके से जानने में मदद करती है। ये हमारे दिमाग को खोलती है और सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। जब अच्छी शिक्षा हम पाते हैं तो अच्छे करियर और मनचाही वस्तु को पाने की जो संभावनाएं हैं वो भी बढ़ जाती है। तो ज़रूरी है कि हम सब शिक्षा के प्रति अपने आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें, उन्हें रोचक तथ्यों के साथ जोड़ें ताकि वो शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और अपने आने वाले जीवन को बेहतर और सुदृढ़ बनाएं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे। पहले हिंदी में, 8:15 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
2: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय

0: प्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन

0: नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
1: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना यूसीसी कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज कलाकार हैं बालीस शर्मा और साथी।

फेर के करे ये सारे एक करे घूंघट की ओ टिबन समझे बेकूफ बतावे श्री।

जागा और सीधा रास्ता ठीक चलिया जा कितने भी अटकता ना जागा। पूरण मली रानी के बहम में रस्सी से पटकता ना जागा और नूना देके दर्श करा दो इनका।

कोई भी बड़ी छोटी।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार हैं बाली शर्मा और साथी।

ना अमृत घूंट भरी थी मेरे लिखे जहर बराबरी तेरे लिखे चीज खरी थी कड़वी ना मीठी मेवा।

न्यारी न्यारी काया सच बुझोते इंसान जमी पे वीर के कारण आया सृष्टि की धुरी वीर बताई यो जगत वीर ने जाया इस पृथ्वी पे उसी स्वर की यह शक्ति और माया हो और ईश्वर अपनी

0: बन बैठा इंसान सबकी करनी देख रहा वो भीतर बैठा भगवान हो जब लड़की नहीं रहेगी ते जब लड़की नहीं रहेगी ते अरे छोरिया ने कौन ब्यावे उसका भला कदेना हो।
1: इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार थे पाली शर्मा और साथी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक रंग।

कार्यक्रम एक रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम में आप सभी को किरण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा जीवन रंगों से बना है। रंग हैं तो हमारा जीवन रंगीन है। रंगों के बिना जीवन की कल्पना करना भी बेगैरत सा लगता है। आज ऐसे ही एक रंग की बात अपने जीवन के हम करेंगे, जो बारिश के बूंदों के रूप में हमारे जीवन में बरसता है और हमारे जीवन में सरसता का रस भर देता है।

श्रोताओं, तपती धूप और भीषण गर्मी के बाद सभी को बारिश का इंतज़ार बेसब्री से रहता है। हालांकि मॉनसून का मौसम यदि समय से शुरू हो जाए तो आम जनजीवन को गर्मी के प्रकोप से राहत मिल जाती है। पूरे साल के बाद शुरू होने वाली पहली बारिश का आनंद कुछ और ही होता है। मन करता है बारिश की बूंदों में भीगकर इस मौसम का आनंद लें और जीवन के हर खट्टे अनुभवों को भूलकर जीवन के मीठे ख्यालों को याद रखें।

पहली बार होने वाली बारिश यदि हल्की फुव्वार बनकर रह जाए तो तपती धरती की उमस गर्मी को और अधिक बढ़ा देती है। फर्क इतना होता है कि जून की सूखी गर्मी और लू से बदलकर उमस भरी गर्मी में परिवर्तित हो जाती है। पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जनजीवन सभी एक प्यासे व्यक्ति की तरह झमाझम होने वाली बारिश का इंतजार करते हैं और इस इंतजार को खत्म करने जब तेज बारिश आती है तो सब में खुशी की लहर दौड़ जाती है। प्रकृति की खूबसूरती और बढ़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे बरसों की हमारी प्यास पल भर में बुझ गई हो।

फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: जब पर्याप्त मात्रा में बारिश होने के बाद मौसम में ठंडक आती है तो गर्मी और उमस से सबको राहत मिलती है। ऐसा लगता है जैसे मानो इंद्र देवता ने खुश होकर सभी के लिए प्राकृतिक एयर कंडीशनर की सुविधा प्रदान कर दी हो और ठंडे मौसम से आनंदित होकर पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, बागों में नाचने लगते हैं, पेड़ पौधों पर हरियाली की बहार आ जाती है और तब हमारा मन मोर की तरह नाचने लगता है, साथ ही ढूंढता है कुछ सवालों के जवाब।

श्रोताओं, ये बरसात हमारे इन सवालों का जवाब दे या ना दे, पर छोटे छोटे अंतरालों में होने वाली ये बारिश सभी के मन को सुकून ज़रूर देती है। सबका मन मयूरी सा नाचने लगता है, हमारा शारीरिक तंत्र सही ढंग से काम करने लगता है और हमारा मन एक बार फिर से चाय और पकौड़ों जैसे पकवानों की ओर भागने लगता है। पर कहते हैं ना कि हर इच्छा हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ऐसे मौसम में जहाँ एक तरफ हमारा मन गर्मी से राहत पाकर खुश होता है, वहीं ये मौसम एहतियात का भी होता है। इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है और बीमारियों का घेरने का जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में अपनाएं जो हमें स्वस्थ रहने में सहायता दे, ताकि इस खूबसूरत मौसम का भरपूर आनंद हम अपने अपनों के साथ ले सकें।

श्रोताओं, बारिश का रंग जहां जीवन को खूबसूरत बनाता है, वहीं बारिश का ये समय उन क्षेत्रों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाता है जहां पानी की निकासी का सही प्रबंध नहीं होता। ऐसे में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और इस समय नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से भी पार चला जाता है। ऐसे में किनारे बसे लोगों के लिए चिंता का सबब बन जाता है और भारी जान माल की हानि होने का खतरा भी हर पल जीवन में बना रहता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ज़रूरी है कि पानी की निकासी का सही प्रबंध हो, तभी इस सुहावनी बरसात का आनंद और खुशी हम बरकरार रख पाएंगे।

श्रोताओं, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जरूरी है प्रचुर मात्रा में पौधारोपण करना, वनों के कटाव पर अंकुश लगाना, बढ़ते शहरीकरण को रोकना, साथ ही औद्योगिकीकरण की रफ्तार को भी संतुलित करना। नदियों पर बांध परियोजना को बल देकर पानी को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम बारिश के पानी को संजो कर रखने की तकनीक यानी रेन हार्वेस्टिंग को इस्तेमाल करना पूर्ण रूप से सीख लें तो इसे जल भराव से होने वाले खतरों की समस्या से तो निजात हम सबको मिलेगी ही, साथ ही जल की कमी की समस्या को भी हम दूर कर लेंगे। इससे फसल परियोजना को भी बल मिलेगा, साथ ही प्रकृति को होने वाले नुकसान को भी हम रोक सकेंगे।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

श्रोताओं, बारिश का मौसम जहां खुशी बनकर हमारे जीवन में दस्तक देता है, वहीं जल संकट के अलावा कुछ दूसरी समस्याओं को भी हमारे जीवन में न्योता देता है। उनमें से प्रमुख है मच्छर जनित रोग, जिसमें वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मुख्य हैं। अगर हम बरसात के मौसम में अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखें, आसपास के गड्ढों को भर दे ताकि उनमें पानी इकट्ठा ना हो, साथ ही घरों में पानी की टंकी, कूलर, बाल्टी, जिनमें भी हम पानी इकट्ठा करते हैं, उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो इस मौसम में होने वाली बीमारियों से खुद को और अपने अपनों को सुरक्षित रख सकते हैं और इस खूबसूरत सुहावने मौसम का भरपूर आनंद भी ले पाएंगे।

श्रोताओं, बारिश की छमछम गिरती बूंदें हमारे तन मन को प्रफुल्लित कर देती हैं। प्रकृति की रौनक इस समय पर देखते ही बनती है। आसपास की हरियाली हमारे मन को खुशी और वो शांति देती है जो दूसरी रोज़मर्रा की चीज़ें हमें नहीं दे पाती। ये मौसम जहाँ गर्मी से राहत देता है, वहीं एक और बात की ओर हमारा ध्यान भी ले जाता है। वो है प्रकृति की सुंदरता, जो हमारे आसपास पेड़ पौधों से झलकती है। उन पर चहचहाते पंछी हमारे मन को सुकून देते हैं और पौधारोपण की आवश्यकता को भी दर्शाते हैं। इस मौसम को पौधारोपण के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। इस समय अगर हम सही जगह का चुनाव कर वृक्ष लगाते हैं तो उनके बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा होती है। सरकारी नर्सरी से हम मुफ्त में पौधे पा सकते हैं, साथ ही उनसे जुड़ी जानकारी भी हमें वहाँ आसानी से मिल जाती है। तो ऐसे में अब ये हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, पौधारोपण करें, ताकि जो इस जीवनदायिनी प्रकृति को संतुलित रख पाए और असमय होने वाले खतरों जैसे भूस्खलन, बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को हम सब कम कर सकें और अपने जनजीवन को सुलभ, सुरक्षित बना सकें और साथ ही अपने जीवन को सुनिश्चित कर पाएं।

श्रोताओं, हमारे जीवन की खूबसूरती हमारे आसपास के माहौल पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर आसपास हरियाली हो, अपने अपनों का साथ हो, तो ये जीवन बेहद सुंदर लगता है। ऐसे में समय कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और ऐसे ही खूबसूरत बातों और गीतों के साथ हमारा एक रंग कार्यक्रम का समय भी अब बीत गया है। तो अब समय है कार्यक्रम को समेटने का, दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक रंग। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बजने को हैं। अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
2: आज चिप से लेकर शिप तक

0: मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी किया। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, हिंद प्रशांत सुरक्षा, निवेश और जनसंबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत संबंधों के लिए द्विपक्षीय समर्थन की पुष्टि की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। ये समिति अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा के दोनों सदनों के समक्ष एक समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के लिए उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामेनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करी। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश के आसार हैं। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi, along with Australian Prime Minister Anthony Albanese, visited the iconic Melbourne Cricket Ground today. The visit highlights the growing role of sports diplomacy in India-Australia relations. The discussions between both the leaders focused on cricket cooperation, sports infrastructure, athlete development, knowledge sharing, the IPL-BBL partnership and collaboration ahead of major global sporting events, including the 2032 Brisbane Olympics and India's 2036 Olympic bid.
3: भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है, आज यहाँ केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है।
2: New Zealand is celebrating Matariki, the Maori New Year,

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर, डीटीएच और न्यूज़ जोन AIR पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:35 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: माँ पिता भगवान का वो अनमोल उपहार हैं जिनका प्रेम और आशीर्वाद जीवन को हर कठिनाई से पार करा देता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
1: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेज

0: के लिए, और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
0: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
1: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए, जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
0: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
1: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया? इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं।
1: जी।
0: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
1: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
0: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है, जो हमारे लिए हानिकारक है।
1: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं, शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
0: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
1: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
0: सचमुच श्रोताओ, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ।
1: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
0: जी हाँ श्रोताओ, अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई 2 या 3 कारण बताइए।
0: 8800044559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुंबी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा,
2: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
1: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजातशत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम

नदी का घाट गौतम घाट कह

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा।

जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
0: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: Bravo! Guardi, salve! Guardi, si fai
1: anche!
2: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धन नंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की,

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।

0: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।
1: सिकंदर
2: बढ़े चलो बढ़े।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पुरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
4: सिकंदर आ गए, सिकंदर आ गए।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
4: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
4: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लड़ सकते हैं।
0: मैसिडोनिया चलो,
4: वापस चलो
0: सम्राट।
1: सुनो मेरे वीरों, सुनो मेरे वीरों,
3: सबर करो साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
4: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,

0: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
1: महाराज चंद्रगुप्त आप?
0: हाँ
2: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
0: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
3: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूँ।
0: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
4: धन्य हो आचार्य,
5: धन्य हो,
6: धन्य हो,
7: धन्य हो।
8: मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा।

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्त बात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया, तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र

0: पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,
1: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओने आईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
1: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफ़ी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षा

लक्षित जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9वीं किस्त जारी कर दी है। राज्य की लगभग 9,98,000 महिलाओं और बेटियों के बैंक खातों में 209,59,00,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
1: साथियों, हर महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत लोगों के खाते को बेनिफिट पहुंचाया जाता है। उसी कड़ी में अब की बार हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209,69,00,000 रुपए की राशि पहुँचाई। आज ये 9वीं किस्त जब हम जारी कर रहे हैं, अब तक 1,832,69,00,000 रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है।
0: इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को खारिज किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के द्वारा आज गूगल, जेमिनी और प्लेसकॉम के सहयोग से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में AI आधारित प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। रोजगार मेले के शुभारंभ के अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील डिंगरा, विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित देश का पहला AI आधारित रोजगार मेला रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है। ये आयोजन युवाओं और उद्योग जगत के बीच प्रभावी सेतु का कार्य करेगा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रोफेसर सोमनाथ ने कहा कि इस रोजगार मेले में प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ये मंच नौकरी तलाशने वाले युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप

0: अवसर उपलब्ध करवाएगा। वहीं उद्योगों को योग्य और प्रशिक्षित मानव संसाधन प्राप्त करने में सहायता करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मिशन ओलंपिक 2036 के लक्ष्य अनुसार खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा पदक लाने के लिए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। इस कड़ी में प्रथम चरण में 11 खेल केंद्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। मिशन ओलंपिक को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। बैठक में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र राई खेल विश्वविद्यालय, पलवल का राज्य खेल परिसर, अंबाला कुरुक्षेत्र के खेल परिसर, पंचकुला का TDL खेल परिसर, जीन गोहाना यमुनानगर और करनाल की प्राइवेट अकादमी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ओलंपिक 2036 टैलेंट मिशन के तहत राई विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन केंद्रों में 1200 बच्चों को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक पदक विजेता कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा 23 अन्य खेल केंद्र भी विकसित किए जाएंगे, जिनमें खिलाड़ियों के रहने व खाने की व्यवस्था होगी। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के रोहतक कार्यालय की टीम ने हल्का पटवारी सुरेश कुमार को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए आवश्यक भूमि दस्तावेज फर्द में चढ़वाने के बदले शिकायतकर्ता किसान से 1,20,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपने सुना आँखियों के झरोखों से फिल्म का गीत हेमलता ने गाया। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। अनुरोध आप सभी का था। आप हैं बलियाली से दर्शन लाल बंसल, सुदेश प्रवीण ममता कमल गर्विश तमन्ना बंसल, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर गगन सोनी जैस्मिन रेखा, बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित राय हैप्पी राय, निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल राय, भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर दीपक छावेंद्र वर्मा, खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश चंदन अंकुश अरोड़ा, औरंगाबाद से राजेश साबले राजदीप राशि शीतल, बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभ्यनंद परमानंद पंकज प्रमोद रोहित मोहित, अमलेश्वर से डुमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारिणी सूरज ज्योति रियांश, जतुका किशनपुर से आलम शेख शबाना नाज रिजवान इमरान फिरोज चांदनी नाज, बठिंडा से प्रेम जोड़ा मनजीत करणवीर दीपेंद्र वीरेंद्र सीमू दमनवीर एकम महेंद्र भट्टी, मलोट से राज शर्मा मीना योगेश और सौरभ शर्मा। अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, टूटे खिलौने फिल्म से यसुदास की आवाज़ आप सुनेंगे। रचना कैफी आजमी की है, संगीत है बप्पी लाहिड़ी का। फरमाइश करता हूँ कि नाम गीत के बाद।

टूटे खिलौने फिल्म का गीत यशुदास और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना। कैफी आज़मी के बोल थे, संगीत था बप्पी लाहिड़ी का। पसंद आप सभी के, आप हैं खंडवा से मोहम्मद रफ़ीक पंवार, साकिब मोइन, छोटू हसनैन पंवार, गांव दीवाल खंडवा से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, रोशनी छोटा अजय, कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरिफा आफरीन इल्मा, पुणे से महेश हजारे, मोनिका हजारे, मिंताशु आदित्य हजारे, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिय, राधिका अनिष्का तन्मय, महसोल बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस हुमेरा नाज, इशरत सुमेरा, रूबीना वसीम, अबीहा नाज, आरिज साजिया शाहिन अरहान, नाजिया नूरी नाज, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, बच्चू चीना शेख, तैमूर बाबू, कोकिलवारा से मोहम्मद फैजल नुसरत जहां, समस्तीपुर से शहनवाज मसरत जहां नाज, हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश रामचंद्र कांता विजय कपिल देव तरड़, बैरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता प्रिया नैना और हिमानी जाखड़। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के अनुरोध पर है। आप हैं लक्सर से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर मेहरा जहां, मसीता डब्बाली से दर्शन लोट मूर्ति रानी, खैरका सिरसा से इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी, सरगुन हनी लोट, सागबन भिवानी से शमशेर गुजर, पालाराम गुजर, सुमन गुड्डी रवि, मंजू पवन, बलजीत जोगेंद्र मंगू, महेंद्र रावत, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद आलिया अयान, कोली हदगांव नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओंकार साईं गायकवाड़, भिवानी से सुशील सोनी, पवन सोनी, भविष्य गुड़िया, कमल साहिल, प्रेमलता ओमप्रकाश सोनी, अर्जुनी बालोदा बाजार छत्तीसगढ़ से, रानू साहू, पूजा उमेश साहू, लच्छनपुर से विश्वनाथ, पंकज तिरुपति, सरोजनी कुंती साहू, शहबाज कला कस्बा पाकबड़ा से मजाहिर हसैन हुसैन अंसारी, रईसा नाज, मुजक्किर बाबू।

मजहर, आसिम, सुमैया और महक। आप सभी की पसंद पर मृग तृष्णा फिल्म का गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ सुनवा रहे हैं। गीतकार संगीतकार हैं शंभू सेन। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया हुआ एक नज़र फिल्म का ये गीत था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। हालांकि गीत की शुरुआत को नज़र लगी थोड़ा

महेश शर्मा, यहीं से बीना शर्मा, नरेश, दीपा, विशाल, चिंकी, सूरज शर्मा, और आप हैं तिलक नगर से स्वीटी, पिंटू, बिंदी, ओबराय और राकेश सेठी। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं अपने इन सुनने वालों के अनुरोध पर। चौधरीवास से आप हैं राजू अग्रवाल, केशव अलख, चरणदास रेखा, फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सुरजीत, प्रमोद, सौरभ डूडी, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, इंचल करंजी से आप हैं प्रमोद, नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, दिल्ली से सुषमा राही, हरकेश ध्रुव, निष्ठा राही, पालदा इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, निर्मलता नगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता खुराना, राजीव ढींगरा, ढाणीपत रोड़ा से मंगल जनागल, राहू कालू, अंकुर सुनीता, श्रेया कृतिका, मेहल जनागल, पैठन से सुरेश और अनीता जाधव, मोरीगेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा आकाश, बरेली कैंट से विनेश, रागिनी मुस्कान, गांव मोहम्मदपुर रतिया से जीवन सिंह बुक, शंटी सिमरन, कौशल्या मनकीरत, जशन भूषण खेड़ा, गुरछिंदर बुक, मधुबनी बिहार से राजू गुप्ता, विनीता रविराज, आशुतोष, सीतामढ़ी बिहार से प्रभात गुप्ता, निक्की, अरविंद, मंटू गुप्ता, परसाटोला से ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी, तुषारिनी, खुमेंद्र, बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची तन्या, दुलापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजव, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक, बराड़ा अम्बाला से रवि राहुल, रंजीत कौर, प्रियंका नूर, नमन, जय प्रकाश, सिमरत, गुरकीरत और गुरशबत। आप सभी के लिए सुनवा रहे हैं अजनबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें आप सुनेंगे। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना और अब सुनते हैं जैसे को तैसा फिल्म का गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें अब आप सुनेंगे। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का ही है, पसंद आप सभी की है। आप हैं ओंगत करनाल से सतपाल शर्मा, दयाराम मदन राणा, खलीफा की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा खुदा दाद मोमिन, सुंदरखेड़ बुलढाणा से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा आकाश, खेड़ी चौपटा हिसार से राजमल सत्ता रेड्डी, हरिपाल जांगड़ा, महावीर दिलबाग सिंह, साहिल कीर्ति रामनिवास, डबवाली से विजय बंसल, उषा दीपू, मोहित बंसल, गिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, मोहम्मद बेगम, जावेद तखान, शनाया शान मोहम्मद, हुमा सुहान, तराना हिना, सीमा तबस्सुम तरन्नुम, जाखोद से शंभुदयाल खटक, बिमला अमरजीत, सुंदरलाल योगेश, दीपक खटक, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, गुरप्रीत गोरा, दिया राजू, निर्मल पोहली, रशिका युवराज, बसंत सिंह चन, नीमन नंदिनी, कुलदीप गांधी, जेके बकोलिया, सुनीता मीनू, बीसलपुर पीलीभीत से विमल वर्मा, प्राची वर्मा, नीतू वर्मा, बरकाकानस से अफसाल इब्राहिमी, शाहीन सुल्ताना, तस्नीम, गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फरहाज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा। आप सभी के अनुरोध पर जैसे को तैसा फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें आप सुनेंगे।

ये था जैसे को तैसा फिल्म का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हमने सुनी। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी के लिए। आप हैं नरवाणा से मेघराज शर्मा, गौरव सौरभ, विजय अजय, लेखू जितेंद्र, नीकू जोगेंद्र शर्मा, नीमच से गोविंद पाटीदार, ममता पूजा, मधुसूदन यशस्वी हंसवी, गोंदर से किरण पाल बुम्बक, तेजपाल कृष्णपाल, रीना सुमन, पूनम सोनिया, रोशनी भगत सिंह, बड़ौद से रामानंद कश्यप, बिमलेश, सचिन, ज्योति, पालेराम भगत, आयुष, आदित्य और इनके मम्मी पापा। आप सभी की पसंद पर जवानी दीवानी फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की ही आवाज़ों में आपको सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना हीरा लाल पन्ना लाल फिल्म से है, किशोर कुमार ने गाया है, वर्मा मलिक के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का, पसंद आप सभी की। आप हैं आदलपुर गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा कृष्णा, खरगोन से अशोक वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र शेख मूसा, रामगढ़ कैंट से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, जालंधर से सोनू, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। आप सभी के अनुरोध पर हीरा लाल पन्ना लाल फिल्म का गीत आवाज़ किशोर कुमार की। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

आप सुन रहे थे आपके अनुरोध पर कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्रों से रिले किए जा रहे हैं।

0: or India will look to make the occasion memorable in this historic encounter. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive shortly in Auckland on two-day visit to hold talks with his New Zealand counterpart. Centre amends drugs rules to regulate high alcohol-containing drug formulations. India strongly condemns conflict-related sexual violence at UNSC, describes it as tool of war and terrorism. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Uttarakhand today. In FIFA World Cup, Spain to face Belgium in second quarter-final tonight. And in women's cricket, India to take on England in historic one-off test match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The details of these stories and more log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री

0: ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा सीआरएसवी की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह की हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
2: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
1: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र

0: प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
1: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
2: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
1: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहाँ कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,400

0: 97 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: खेत कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले भाई सारे बन भाई अनिल भाई की राम राम भाई। गर्मी काज में चौपाल तो बार की बात कर रहा हूँ, तक की अच्छी धूप है, तोड़ है और वे बरसात का मौसम चल रहा है। हाँ ये ज़रूर है भाई, कितने तो हाथ जुड़वा रखे हैं और भाई कितने बारिश काम चला उसे भी कोनी भाई। ये जो पहले आली बारिश हुआ करती बुलबुल आड़े मेरे कितने छेर नहीं रहा करती, वो बारिश नहीं है, कितने भाई ज़्यादा हो रही है कितने कम हो रही है। और विशेषकर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात कराँ, उत्तराखंड की, हरिद्वार साइड की बात कराँ, उत्तर प्रदेश की और महाराष्ट्र में मुंबई की, बम्बई की खूब ताबड़तोड़ बारिश हुई है। और भाई थोड़ा सा ध्यान भी रखें भाई, अपना आगे चल के सामने का भी ना भी लगेगा बरसात के मौसम में। जो भी अपना तीर्थ यात्रा करें भाई, तीर्था पर जावें, पहाड़ा में घूमन जावें, तो अपना थोड़ा सा मौसम का जो मिजाज है वो देख के, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात जो नदियाँ में भी हो जाए, पहाड़ा में बारिश हो है, बहुत सारे पेड़ कचरा और भाई रेत और तेज़ बहाव पानी का वजह है, तो जो भी भाई अपना यात्रा करें वो थोड़ा सा मौसम का हिसाब किताब देख के, कितने आना जाना है तो थोड़ा सा अपना भाई बढ़िया डाल सोच विचार के। आजकल तो सारी अपने पता लग जाए एंड्रॉयड फ़ोन नाम भाई उठ के कड़े के चल रहे हैं, कड़े के चल रहे हैं। और छोटे बच्चों को, बुजुर्गों, उन्हें भाई कितने भी लंबा सफर में ले जाने बच्चे और कोई भी अपने ऐसा साधन कहीं भाई के करें भाई 300-400 किलोमीटर अपने मोटरसाइकिल पे चल दे हैं, डाक काउंट भी लाऊंगे आगे और भी, तो थोड़ा सा भाई देखो ये भी एक ज़रूरी है काम, क्योंकि उन्होंने कही थी किसी ने बोला भाई सब में भगवान है। और एक भाई अगत आते चिंगरे आवधा और बंधन सोची वो मावत था, उसने कही बोला भाई अगत अटले आते भी चिंगर रहा है, थोड़ा सा पागल अवस्था में है, तो उन्होंने बोला भाई सब में भगवान है। वो आते के दौर से आया और भाई उन्होंने अपना सूंड तटा के पटक दिया, चोट फेट लग गई और जाके फिर उस बंदे दौर गया, उन्होंने बोला क्यों भाई पैरा में क्या दिक्कत हो रही, क्यों लड़खड़ा हुआ है? बोला जी आपने दही तुड़वा दी। बोला क्यों? बोला आपने को सब में भगवान है यार। बोला भाई हाथी आओ था अगर चिंगरे उड़ा और उसने मैं भगा दिया, ठाके मेरी चोट लग गई। बोला फिर किसी ने रोकया नहीं तू? बोला मावत कह था कि भाई थोड़ा सा अटले बोले चिंगरे उड़ा है। बोला मैंने बोला सब में भगवान, तो बोला मावत में भी तो भगवान है जिसने बताया। तो भाई देखो आस्था की चीज़ें हैं बिल्कुल, स्नान भी गंगा स्नान भी, यमुना स्नान भी, कांवड़ भी भाई लाऊंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना भाई जान का और माल का ध्यान रख के कोई भी सी अफरा तफरी कुछ भाई देखेंगे सामने को भी न

0: बहुत डीजे जो भाई काउंट पैदल पैदल काउंट ले आऊंगे वो भी बहुत दिक्कत में उसमें आ जाए हैं, और बहुत इतना एक ध्वनि प्रदूषण करते हैं तो कितने न कितने भाई अगर वो सहज जाए तो फिर देखो उसमें जो हम धर्म की जगह पाप का काम हम कर रहे हैं, कोई दुर्घटना तो बचें, बाइक वाइक इतना लंबा ना लेके जावें, कोई साधन लेके जावें, आराम तय भाई आवें आराम तय जावें, कोई बड़े बुजुर्ग है कोई भाई पैर कराना है कोई पैड़ियाँ पर चढ़ाना है, तो इस तरह की चीज़ों में भगवान भाई ज़्यादा खुश हो है, और ना के उड़दंग जो तारे हैं वो उड़ जाए किसी तरह का कोई नशा विषय इस तरह के भी भाई देखे हैं करे हैं, ये गलत काम है हमने किसी भी तीर्थ स्थल पर नहीं करने चाहिए, और पहाड़ी एरिया में बारिश के मौसम में थोड़ा जान तो हमने परहेज रखना चाहिए। बाकी भाई अपना बारिश का जिक्र हमारा चल रहा था, भाई कितने ज़्यादा और कितने कम भाई दान अपना बाढ़ देख के खूब लाने लग रहे हैं, क्योंकि पे जो प्योद हैं आगे फिर फुटाव कम लेंगे अगर भी पुरानी हो जाएंगी तो अपने पानी का प्रबंध है तो भाई अपना लगाना शुरू कर दें लगा दें, और भाई बीज उपचार नहीं करे हो तो अपने पौधों का जो उपचार है भाई वो इसमें ज़रूर कर लें। बाकी भाई जो खेत खलिहान कार्यक्रम है महाराज उसमें जो अब चर्चा करेंगे वो करेंगे कि भाई जो अपना चारा फसल है उनकी देखभाल के बारे में, लेकिन भाई हम पहले सूचना दे दें हैं कार्यक्रम संबंधी, भाई 3 से लेकर 4:15 तक फोन इन कार्यक्रम है पशुपालन संबंधी, जिन भाइयों के भी जो भी अपने डांगर डोर रखे हैं पशुपालन का काम है किसी भी डाल भी पशुओं में कोई समस्या है कोई जुगाड़न की है कोई थन की है किसी भी डाल की कोई समस्या डॉक्टर साहब आऊँगे उन तो भाई अपना सवाल पूछ सके हैं, भाई अपना बढ़िया अपना सवाल तैयार रखें कापी पेन दौरे रखें ताकि भी कोई भी डॉक्टर साहब भाई अपना दवाई वगैरह बतावें भाई अपना नोट कर लें, और भैया फिर बता दें भाई पशुपालन संबंधी कई भैया फ़ोन आए हैं बोला जी खेती बाड़ी का है या पशुओं का है, तो आज भैया पहले बता दें पशुओं का है, फ़ोन नंबर्स हैं भाई 255-446 255-447 255-448 रोहतक का जो STD कोड है भाई 0-12-62 शाम ने ये अपने 3 से लेकर 4:15 तक ये कार्यक्रम भाई अपना रिकॉर्ड कराया जाएगा फ़ोन इन, और फिर शाम ने 6:20 तक लेके और 7:30 तक भाई इसका जो कार्यक्रम का जो प्रसारण है 1 घंटा 10 मिनट का वो करा जाएगा, और चारा फसल हम भाई जिक्र हम करें तो भी देखो फिर वही बात आ जाए बारिश की मौसम की, गर्मी का मौसम में जल्दी जल्दी चारा फसलों में पानी चाहिए ताकि उसमें हरे अपन रही जा फुटाव अच्छा चाली जा, और जो भाई काट ले हैं भाई जैसे कई काट वाली ज्वार की हम बात करें तो पानी उसने फेर चाहिए, अरे कटाई के बाद उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा वह देनी है, लेकिन ज्वार में हमने बहुत सारी भाई कटाई में भी सावधानी रखनी है चराने में भी उनका जिक्र भाई बाद में करेंगे, पहले भजन रागनी इसमें वादे हैं गायक कलाकार हैं शिवरतन शर्मा और उनके साथी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है, आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार, 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

तो भी आपने सुनी रागनी, गायक कलाकार थे शिवरतन शर्मा और उनके साथी, इनकी गायी हुई रागनी एक और भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम जिक्र कर रहे थे जो हमारी चारा फसलें हैं।

0: फिलहाल जो मौका उन्होंने लगा रखी है उनकी देखभाल के बारे में। भाई ज्वार चारे के लिए मुख्य हमारी फसल है, इसके अलावा भाई बाजरा भी है, गुआर भी भाई चरा ले हैं, और भाई जो लोबिया है ये भी अपने चारे के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करी जाए। और बाकी तो भी राम बरसती सामण का भिन्न में बिलावर जी बरस राम साठ सामण धरती हो जाए रही भरी, तो जिस तरह बारिश अच्छी आव है फिर तो ये हो जाए कि खूब कई तरह के घास हैं, सामक है, और जो पुरानी वनस्पति जो यानी पुराने जो हमारे घास थे बिचापड़ थे तकड़िए थे ये थोड़े से लुप्त से हो गए, लेकिन सामक का बहुत ज़्यादा भाई दुबड़ है, इस तरह के जो घास हैं बहुत सारे हो जाए हैं, और भी कई तरह के जो घास हैं मैं रड़जा कच्ची सांटी छूटी है, कोंदरा भी है भाई, वो भी अपना एकला तो भाई पादरा तो कुंजरा आ जाए, लेकिन मिला जुला के ये जो घास हैं वो इस्तेमाल में लाए जाएँ, तो इनकी जो चरण का जो तरीका है उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चारा फसलों की देखभाल की अगर बात आओ तो भी ज्वार में पहली बात तो यह है कि भाई कई दिन जिन भाइयों ने बोए हो गए भाई पानीपात का साधन नहीं था, तो ज्वार पना जाए है, पनान का मतलब ऊपर का पत्ता एकदम मिसा हो जाए तलवार की नोक पर का जमा सुई भर का ऊपर तक पहना हो जाए है, तो पशु जिस तरह उसने खागा भैया तो आमतौर पर मौका पहले पात नू ला गया करते कि हम डांगरा भाई छोड़ देंदे चरा के लेंदे डांगर कि मुँह मार लेंदे गोवंश और भाई पात लाग जाता, लेकिन पात तो आम का वह है उसने, लेकिन उसके अंदर एक HCN जो जहरीला पदार्थ है वो बन जाए है, और उसके कारण फिर भाई पशु की मौत हो जाए है, पशु का गल घुट जाए है, जहर उसमें सारा शरीर में फैल जाए है। बिना काटे कोई भी अरे चारा चाहिए, ज्वार की हम बात करें चाहिए लोबिया की हम बात करें भाई काट के जैसी बाजरा भी है, पादरा अगर हम भाई जुजाड़ा न्यार घास फूस जो भी खेत में तो पड़ा पशुओं का तर तो उसने भी यदि हम पादरा घेर दें आफरे की समस्या उसमें आ जाए है। पहले क्या करते हैं भाई पशु जरा में आ गया तो जरा एक कीड़ा उसमें विशेषकर जो हमारे खांड दाने नालियाँ का जो घास होया करता उसमें एक ऐसा कीड़ा होया करता जरा उसने क्या करते तो वो पेट में चला जाता तो पशु का आफारा आ जाता और पशु की भी मौत भी उसमें हो जाया करती, जमा जुगाड़ना बंद कर देंदा अफरा तफरी मार जाती पशु बहुत काल उसमें हो जाता, तो भी डांगर डोर में जो भी हम घास गे रहे तो काट के गे रहे और उसमें जो सूखा चारा है वो ज़रूर मिला लें। तो भी ज्वार में पहली बात तो पानी की कमी हमने नहीं रखनी, और जमा जब जी काची फूट के ना बिल्कुल तैयार नहीं हो जाती फिर हमने चराने खातर उसमें इस्तेमाल करनी है। जो भाई अपने फालरी खातर हरी फालरी चराव हैं उन पर देखो भाई एक आधा पड़ुआ बो रखे है, किसी ने बेचने खातर किला बो रखा है, दो किले बो रखे हैं, वो अपने पानी पात के जो पुख्ता प्रबंध है वो भाई लावे हैं, सोका इस फसल में हमारी में नहीं आन देना। फिर भाई जो कई कटाइयाँ आई है उसमें पहले काम तो ये है कि भाई जिस तरह हम उसमें काटें नाइट्रोजन की जो मात्रा यूरिया की वो उसमें हम दे दें, लोबिया और ज्वार यदि हम भाई एक तो अपना दलनी होगी एक गैर दलनी होगी दोनों हरे चारा वाली होगी और फिर कि मैं सूखा चारा और भाई थोड़ा बहुत तो पशु रज के नहीं खा तो हल्का फुल्का चून भी उसमें गैर सके हैं, अगर पादरी ज्वार की सानी हम गेरन लग गए पादरी लोबिया की हम गेरन लग गए और भी जो भाई संक्रांति घास है जो हम पादरा गेरन लग गए तो फिर पशु उसमें उगर जाए है और आफरे की समस्या पशु में आवे है तो किसी भी डाल का जो एक डाल का घास है वो ना गेरे, सूखा चारा उसमें चाहिए पराल का हमने काट के गेर रखी है तूड़ा है बाजरे की पुड़ी है कड़वी है या फिर अपने भाई ज्वार की है जो भी हम सूखा चारा के रूप में दें हैं वो उसमें ज़रूर मिला के फिर पशु ने खान खातर हम गेरे हैं। और हर एक कटाई के बाद भाई हमने जिक्र कराया था नाइट्रोजन की मात्रा देनी है, पानी का पुख्ता प्रबंध हमने रखने हैं और जड़ा भाई गणे राम बरस के थोड़ा जल निकासी का भी जो प्रबंध है वो हमने रखना, भाई अगर जो भी हमारे चर वाली फसल है उनमें हफ्ता 10 दिन पानी रह गया तो फिर वो अपने गलनी शुरू हो जाएंगी और सूखनी शुरू हो जाएंगी और फिर उसका भी ना तो हमारा सूखा फरडा काम आओ कड़वी के रूप में इस्तेमाल कर सकते और ना ही उन्हें भैया चारा के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते, तो यह समस्या मोटी आज के इसके लिए ज़रूरी है कि भाई अपना पानी के जो इंतजाम है निकालने के वो करें और जड़े भाई अपना बढ़िया खेत हैं मतलब जो नरम खेत हैं ये तो पहले जिक्र करें हमने बढ़िया खेतना का और उड़ भाई अपना जो डोला मंदी है मेड मंदी है वो कर ले ताकि पानी ना उतरे और जो हमारा चारा है उसने अच्छी एक नमी मिल जाए और बढ़िया अच्छा फुटाव लेके अच्छी ग्राउंड करके और बढ़िया एक हरा पत्ता आकर फिर उसने चारा के लिए हम इस्तेमाल करें। बाकी भाई इसमें जिक्र और भी करेंगे एक रागनी और भजन एक बार सुनवा दें कलाकार एक बार फिर के साथ
1: और अकेली बिना को देखकर

संत सतगुरु के यज्ञ तू घणी अंगाई करता। माँ पिता सुत बुआ बण बहु भाई।

तो भैया आपने सुनी रागनी, गायक कलाकार थे विशिव रतन शर्मा और उनके साथी। और भैया ने एक बार फिर याद दिवा दे भाई फोन इन कार्यक्रम की, पशुपालन संबंधी कार्यक्रम भाई 3 से लेकर 4:15 बजे तक भैया फोन आओगे रिकॉर्ड कराया जाएगा और शाम 6:20 से लेकर 7:30 तक भी उसका प्रसारण होगा। भाई फोन करें और जो भी पशुपालन संबंधी समस्या है भाई अपने डॉक्टर साहब से पूछ चुके हैं। और बाकी भी हम चारा फसलों की बात कर रहे थे, चारा फसलों भाई मोटी बात तो यह है कि भाई पानी की कमी ना होने दे, जो नाइट्रोजन की मात्रा वो डालते रहें। और भाई देखो चारा फसला में और ची सब्जी फसलों जितना भी हो उसका भी कीड़े की अगर समस्या है तो उसमें भाई ये ध्यान रखें भाई नीम पर आधारित जो कुछ छिड़काव हैं, रस चूसने वाले जो कीट हो जाए हैं, ज्वार में जिस तरह पत्ता एकदम टपकन सा लग जाए, तो इस तरह के जो निमिस्टिन है चूक है इनका अपना छिड़काव करें। और बाकी आगे चल के लंबी जिन भैया चलानी है, पूड़ी पाड़ी बनानी है सुखा के आगे काट के, तो उनमें कुछ छिड़काव हैं मेलेथियन जिसे जो दवाई हल्की फुल्की वो उसका छिड़काव कर सके हैं। और जड़ते भी हो भी अपना पानी पात का जो पुख्ता प्रबंध है, पानी जिन भैया ने भी अपने जो जरूरत है उड़े पानी दें, और धान के लिए जो भाई अपने तैयारी कर रहे हैं मेड़बंदी अच्छी से करें, कंप्यूटराइज कोड़ी दें बढ़िया लेजर लेवलिंग करके। और अगर इसी समस्या दिखे थोड़ा बहुत ऊँचा नीचा तो पूरा किले के बजाय भाई किले में एक बीच में डोली घेर लें, उसमें पानी की भी सुविधा रहेगी, अफरा तफरी भी ना माचेगी। और पहले अपने भाई ये जरूर देख लें भी हमारे पास पानी के कितने प्रबंध हैं, उसी हिसाब से जो भी अपने धान का जो पानी पात है वो हमने करना है। कपास फसल की बात करें तो भाई निराई गुड़ाई का और ये छिड़काव भाई एक आधा ला गया करण, बाकी घना जो टंकियां चक्कर में ना पड़े, इब जो ठीक टाइम पर भाई बारिश अपना हो ही जा तो कुछ रस चूसने वाले कीट हैं, रतेला है उसके जो अंडे बच्चे हैं या फिर सफ़ेद मक्खी है उसके जो अंडे बच्चे हैं वो उन तय नष्ट हो जाए बारिश ने, अगर थोड़ा सा पिछवाड़ा अमी आ जाए थोड़ी हवा का साथ आ जाए। बाकी जो घनिया खेती बाड़ी है उनमें भी टिंडा बनना अपना शुरू भी हो रहा, बन भी रहा है, पटवार भी ठीक ले रही हैं। और कुछ पुरानी भी बाद में जो छोटी अवस्था में है पछेती हमने बिजाई करी है उसमें भी थोड़ा सा धीरे धीरे करके ग्रोथ करेंगे विकास करेंगे, उनमें घनी नाइट्रोजन वाली जो मात्रा है कपास फसल में वो ज़्यादा ना डालें, क्योंकि एक तो उससे भाई जो रस चूसने वाले कीड़े हुए पत्ता चिकना होगा कीड़े आएंगे, दूसरा फिर घनी वनस्पति का अगर बढ़वार हो जाए है तो फिर उसमें भाई जो फल है फूल है ऊपर छोटी छोटी पाव है टिंडे जो उसमें घाट लग गए हैं, तो इन बातों भाई अपना ज़रूर भी भाई ध्यान रखें और ध्यान घड़ी का भी इस एक साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। चलेंगे सारे भाई ने, राम राम।

पर डीटीएच और न्यूज होने आईआर पर, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर, डीटीएच और न्यूज़ ओनी आईआर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। समय हुआ है शाम के 5:09:45। हमारी विशेष सभा में अब आप सुनेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में आशीष जी। सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
3: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे
2: जी।
3: तो इसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
2: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही धुरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
3: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
2: जी,
3: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
2: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
3: बिल्कुल,
2: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
3: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुँचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहाँ पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुँचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है, पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं x से 3x तक पहुंचा। तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तुम इतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरी

0: केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूँ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम × 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें, तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का, अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम

0: करें। आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न हैं उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर।
1: थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं उसके ऊपर फिर जो एलीट क्लास एफ्लुएंट क्लास होता है। तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी। और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
0: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके।
1: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने, कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं।
0: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
1: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
0: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते हैं,
1: जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर

0: आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी,
1: जी
0: और उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज फूड। उसको कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल
0: हाँ
1: कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं। तो क्या हमें इसकी ज़रूरत है इमिडिएटली? अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो जो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाए कि ये रियल में नीड है या वॉन्ट है। तो एक बार नीड वर्सेज वॉन्ट की चीज़ हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वॉन्ट है, और फिर नीड है कि वॉन्ट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
1: जी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वॉन्ट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कंपीट करना चाह
0: बिल्कुल
1: रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वॉन्ट के,
0: बिल्कुल
1: जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग।
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे, और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच, सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर यह धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा,
1: जी
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शंस लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी,
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है, उस

0: में कहाँ वो किस चीज़ को रेगुलेट कर सकता है और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल, तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: Yes.
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं, हमारे मेल्स में हम लोग बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशन हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशन बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं?
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होते हैं ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप

0: क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
1: इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते. या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है. इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है. किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है, उस चीज को इंप्रूव करें. जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा. किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा. किसी को लगता है कि उसको बहुत इम्पल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की. तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा. तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है. जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है. जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कॉम्पोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है. तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं. तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है.
0: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
1: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है. तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स. तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए. लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे. वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं. तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे. और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया. तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा. तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज. तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा. और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया. और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी. तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए. तो यहां से शुरुआत की. और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है. तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके.
0: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें, ये कितना जरूरी है. बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी.
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत. इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद. आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं. हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com.
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ.

नमस्कार, युवा संसार सुन रहे सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आज आपकी अपनी रेडियो दोस्त नंदिनी। तो साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहां चाह वहां रहा, ये एक प्रसिद्ध हिंदी कहावत है जिसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की सच्ची इच्छा, दृढ़ संकल्प और मेहनत करने का जज्बा हो तो वो अपने सामने आने वाली हर कठिनाई का समाधान खोज लेता है। ये कहावत हमें सिखाती है कि सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच से प्राप्त होती है। जीवन में अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब रास्ते कठिन दिखाई देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हार नहीं मानता और अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है वो अंततः सफलता प्राप्त कर लेता है। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने दृढ़ निश्चय के बल पर असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव बनाया है। ये कहावत विद्यार्थियों, युवाओं, खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि ये बताती है कि इच्छा शक्ति और परिश्रम मिलकर हर बाधा को अवसर में बदल देते हैं। इसलिए हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी मंजिल की ओर पूरे आत्मविश्वास, लगन और मेहनत के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही इस कहावत का वास्तविक संदेश है कि सच्ची चाह और अटूट प्रयास से हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और एक बार हम फिर से कह सकते हैं कि असंभव केवल तब तक लगता है जब तक प्रयास नहीं किया जाता। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है शुक्रवार का दिन और आज के दिन हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं युवा पसंद, जिसमें आपके लिखे पत्रों को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद के कुछ गीत। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कार्यक्रम युवा पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक, जिसका पिन कोड है 124001, इस पते पर आप हमें खत लिखकर भेज सकते हैं ताकि नए नाम हम आप सबके इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे अपने पहले गीत के साथ, जिसकी फरमाइश हमें लिख भेजी है मोहला हिसार से। आप हैं राजकुमार, गीता, अमन, सानिया, सुभाष, उषा, राहुल, आरती और रोहित ढोचक। सनावत से ये खत हमें मिला है दिलीप मालाकार, योगेश, मुस्कान, बाबू लाल चौधरी और निर्मल बाई का। भवानीगढ़ पंजाब से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है परमिंदर रंधावा, सरबजीत हरजोत और कुलदीप रंधावा ने। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम और रियाज और रिफाकत। भोपालगढ़ राजस्थान से ये खत हमें मिला है धर्मेंद्र, कपिल और पूजा परिहार का। बोताला बाजार से आप हैं बबलू ठेकेदार, शेख भागिर, वजीर सोहेल, सैयद तैमूर, शामिर खान और सैयद अजलान। मेरठ छावनी से ये खत हमें मिला है दिग्दर्शन और कविता का। आइए साथियों, सुनते हैं इन साथियों की फरमाइश का ये गीत, जो है फिल्म यादों की बारात फिल्म से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जो था फिल्म यादों की बारात फिल्म से। आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। और अगले गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है कलाना भादरा, हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश योगेश और युद्धव कड़वासरा ने। झज्जर हरियाणा से आप हैं बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक, मंजू भाटिया। यमुनानगर से ये ख़त्म में मिला है विनोद नैन का। साथ ही रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। चरखी दादरी से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है जगनेश सांगवान ने। फ्रांसी हिसार से यह खत हमें मिला है राजकुमार डूडी, प्रमोद और पुष्पेंद्र डूडी का। भिवानी से आप हैं जितेंद्र खेड़ा। बगबुड़वा पथरिया से आप

नरेन नेताम कुसुम नेताम गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से खत हमें मिला है विनोद बारासा विशाल बारासा विकास रोशनी और शगुन बारासा का। हर गोविंद नगर नवा शहर से आप हैं सुरेंद्र संधु अनीता रोहित रितेश शिखा संधु प्रीतिशा और मैक्स। आइए साथियों सुनते हैं हमारे इन साथियों की फरमाइश का ये गीत जो है फिल्म जूली से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: अभी आपने सुना ये गीत जो था फिल्म जूली से, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। और साथियों, इसी गीत की फरमाइश हमें और भी हमारे साथियों ने लिख भेजी थी, जिनका नाम है घाड़ी नंदूरा महाराष्ट्र से आप हैं, श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, बड़वाह खरगोन से ये खत हमें मिला है प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली का, शेरगढ़ मलोट पंजाब से आप हैं बलराज राम कालवा, भोला राम, लक्ष्मी बेबी, कुदरत, मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह, हरप्रीत और शिवराज मान, बागपत यूपी से ये खत हमें मिला है एहसान अली का, दिल्ली से आप हैं डॉक्टर सोनम अदीबा, पुणे से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी पंकज वाड़ोदे, आर्या, आदि, शैलेश, सोनम, धनुषपुरी और बीटी वाड़ोदे ने, बक्सर बिहार से आप हैं शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, राज अंसारी, आसमा खातून और गुलफराज भागलपुरी। साथी और भी साथी हैं हमारे जिनका नाम है खरगोन मध्य प्रदेश से, ध्रुवांश सोनवड़े, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, कृष्णा और शुभम सोनवड़े। कृष्णा पार्क से आप हैं सुखविंदर जोड़ा, पिंटू और सीटी दीवान। लक्सर हरिद्वार से ये खत हमें मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, महाराज जहान का। गाज़ियाबाद से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी रज़ा अहमद, इशरत जहान, जमाल, कमाल, माहिर और बुशरा ने। जगराव से आप हैं सुनील पाठक, कमल, दीपिका, आशीष और गाव्या। सर्वानिया महाराज नीमच मध्य प्रदेश से ये खत हमें मिला है गोविंद पाटीदार, ममता, पूजा, मधुसूदन, यशस्वी और हंसवी पाटीदार का। और साथियों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की 3री बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड

0: जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटक। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर पशुपालन संबंधी समस्या व सुझाव पर फोन इन कार्यक्रम प्रसारित होगा। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अनिल धैया। ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7:00 फोन इन कार्यक्रम जारी रहेगा। फिल्म संगीत का लुत्फा उठा सकेंगे शाम 7:30 पर और रात 10:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब प्रस्तुत हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातः 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे। लोक संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 8:30 पर। दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा संसार शाम 5:30 पर। रात 9:30

इस मिनट पर सुनिएगा संस्कृति विज्ञान पत्रिका और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर धर्मवीर यादव के साथ बातचीत का विषय रहेगा धान फसल में खरपतवार नियंत्रण। ग्रामीण संसार में शाम 7:00 हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम प्रसारित होगा। दोपहर 2:30 पर बाजरे की बिजाई इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकेंगे। सुबह 9:00 कार्यक्रम सबरस के अंतर्गत। दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत और शाम 7:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ स्थानीय सूचनाएं। राज्य अपराध शाखा जिला रोहतक द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार अंजलि पत्नी अंकित दिनांक 11/3/2025 से लापता है। इनकी उम्र 24 साल है। इनका हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहुआ लंबूतरा चेहरा, शिक्षा 10वीं पास, कद 5'5", इन्होंने साड़ी पहनी हुई है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिले राज्य अपराध शाखा रोहतक में संपर्क करें। एक और सूचना, राज्य अपराध शाखा जिला रोहतक द्वारा देवेंद्र पुत्र श्री भगवान दिनांक 5/4/2025 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है, रंग गेहुआ लंबूतरा चेहरा, कद 5 फुट, उम्र है 26 साल। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिले इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 8582000015। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19 योजनाओं के तहत 1582,16,00,000 रूपये हस्तांतरित किए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त जारी की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, डीबीटी प्रणाली में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाने के साथ साथ सरकार पर लोगों का भरोसा मजबूत किया। केंद्र सरकार ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए लाइसेंस अनिवार्यता से मिली छूट खत्म की। कुरुक्षेत्र में नागरिकों की आधार संबंधी समस्याओं के लिए शहर के सेक्टर 17 में आधार सेवा केंद्र खोला गया। और अम्बाला जिले में निरक्षर कैदियों को शिक्षित करने की अनूठी पहल शुरू की गई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से राज्य के 50,20,460 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 19 योजनाओं के तहत 1582,16,00,000 रूपये सीधे हस्तांतरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत

0: 38,83,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,121,39,00,000 रुपए की राशि सीधे भेजी गई है। लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि भेजना सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त जारी की गई। इसके तहत 9,98,000 बहनों और बेटियों के बैंक खातों में 209,69,00,000 रुपए हस्तांतरित किए गए हैं।
1: साथियों, हर महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत लोगों के खाते में वो बेनिफिट पहुंचाया जाता है। उसी कड़ी में अब की बार हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10,00,000 के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209,69,00,000 रुपए की राशि पहुँचाई है। अब तक 1,832,69,00,000 रुपए की राशि बहनों के खाते पहुंचा दी गई।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत आज 3,295 परिवारों को 125,11,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अब तक 77,330 परिवारों को 2,918,42,00,000 रुपए की सहायता जारी हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाले 5,16,000 महिलाओं के बैंक खातों में मई माह की 18,97,00,000 रुपए की सब्सिडी भी जारी कर दी गई है। अब तक 14,73,000 पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत 320,97,00,000 रुपए की सब्सिडी सीधे खातों में भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,165 पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 107,00,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 827,22,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 76,466 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें 41,260 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि 35,206 मकानों का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था के जरिए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि डीबीटी प्रणाली ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पर रोक लगाने के साथ साथ लोगों का सरकार पर भरोसा भी मजबूत किया है। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने पारदर्शिता, सुशासन और अंत्योदय के संकल्प के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने की व्यवस्था लागू की है।
2: इसी 1.5 वर्षों के अंदर लगभग जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है या भर्ती हमने कर लिए हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है हरियाणा सरकार के अंदर। परंतु वो भी बताएं ना जो झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं। कांग्रेस के समय में क्या था, बेटा पेपर भी नहीं देने जाता, जो पेपर देख रहे थे उनके नाम ही नहीं आवा।
0: उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में गरीबों, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के नाम पर केवल वादे किए जबकि वर्तमान सरकार ने उन्हें योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी घोषणाओं और झूठे वादों के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास करती रही है जबकि डबल इंजन सरकार जनता से किए गए प्रत्येक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों

0: को अब लाइसेंस से छूट नहीं मिलेगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। मंत्रालय का कहना है कि इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होगी। कुरुक्षेत्र में नागरिकों की आधार संबंधी समस्याओं के हल के लिए शहर के सेक्टर 17 में आधार सेवा केंद्र शुरू किया गया है। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कुरुक्षेत्र के नागरिकों को अब आधार कार्ड से संबंधित कार्यों को करवाने में आसानी होगी।
1: नया आधार केंद्र बहुत ही अत्याधुनिक सुविधा से युक्त है, जहाँ पे 4 काउंटर हैं और ये सातों दिन खुला रहेगा। नागरिकों को यहाँ सेंटर पे एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा। बैठने की, पेयजल की आदि सुविधाएं भी बहुत अच्छे से क्रिएट की गई है।
0: उन्होंने कहा कि केंद्र में बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती व शिशु को आधार से संबंधित कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति आधार सेवा केंद्र से संबंधित अपने कार्य के लिए समय ले सकता है। उन्होंने कहा कि नवजात शिशु की आधार कार्ड से संबंधित सुविधा निःशुल्क रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश में अब तक यमुनानगर, गुरुग्राम, हिसार और अम्बाला में केंद्र खुल चुके हैं। कुरुक्षेत्र के बाद कल सोनीपत में ऐसा केंद्र खोला जाएगा। अम्बाला जिले में जेल पुलिस अधीक्षक सतविंदर गोदारा के सहयोग से जेल में निरक्षर बंदियों को शिक्षित करने की अनूठी पहल शुरू की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम उल्लास योजना नव भारत साक्षरता अभियान के अंतर्गत जेल में बंद सभी 236 निरक्षर कैदियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इन्हें पढ़ाने का जिम्मा जेल में ही बंद 17 शिक्षित कैदियों ने स्वैच्छिक शिक्षक बनकर संभाला है।
2: हम सेंट्रल जेल में गए थे, वहां पर हमने उल्लास कार्यक्रम के तहत 236 जो बिल्कुल निरक्षर वहां पर कैदी थे उनको रजिस्टर किया है उल्लास पोर्टल के ऊपर, और 17 वहां पर हमारे कुछ पढ़े लिखे कैदी थे जिनसे हमने पूछा कि क्या आप इनको पढ़ाने का काम करेंगे, तो उन्होंने स्वेच्छा से वो कार्य स्वीकार किया और उनको हमने वॉलंटियर टीचर के तौर पर उल्लास पोर्टल पर रजिस्टर किया है।
0: अम्बाला जिले में इस अभियान की सफलता को लेकर उन्होंने बताया कि अब तक 27,000 लोगों ने साक्षरता का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है। पलवल जिले में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पलवल जिला में 10 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 24 अमृत सरोवरों का सौंदर्यकरण किया गया है। पलवल के खंड विकास अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि पलवल खंड में 5 गंदे तालाबों को अमृत सरोवर में बदला गया है।
3: जो भी अपने गंदे तालाब थे उनके एस्टीमेट हमारे एक्शन साहब द्वारा बॉन्ड अथॉरिटी को भेजे गए, वहां से पैसा मंजूर हुआ। पैसा मंजूर होने के बाद पलवल ब्लॉक 5 गांवों में 5 जोहड़ों का सौंदर्यकरण किया गया है। तो इसमें है किशोरपुर में 2 तालाब हैं, चिरवाड़ी में 2 तालाब हैं और एक ताराका में 1 तालाब।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19 योजनाओं के तहत 1582 करोड़ 16 लाख रुपए हस्तांतरित किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: देखा है। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: कृषि गत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने भाई अनिल भाई के राम राम। भाई आज शुक्रवार है और पशुपालन संबंधी जो अपना भाई कार्यक्रम 3 से लेकर 4 तक रिकॉर्ड कराया भाइयों तो भी सुनवाया जाएगा। और

कि राम राम भाई। आज शुक्रवार है और पशुपालन संबंधी जो अपना भाई कार्यक्रम 3 से लेकर 4 तक रिकॉर्ड कराया भाई, तो भी सुनवाया जाएगा। और इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर अनिल दहिया जी स्टूडियो में पधारे हैं। आप डॉक्टर साहब